जोजोले पाथौ नेपाल सम्बन्धी छौ पी खुद तसला गादसमी थो रेडियो नेपाल ख आ नेना दिसा जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या बुक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिथी पेङ्गु विधेयक प्रमाणीकरण याना दिगुदु। राष्ट्रपति पौडेल सार्वजनिक खरिद निकको संशोधन विधेयक 2083, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण शोकको संशोधन विधेयक 2083, सहकारी नापाङको संशोधन विधेयक 2083 व स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नापाँसु नेपाल एनियाता संशोधन यायगु विधेयक 2083 बिहिबार प्रमाणीकरण याना दिगु। राष्ट्रपति कार्यालय प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यम पिथना दिगु विज्ञप्ति नेथना संघीय संसदीय बैठक सा पारित जुया प्रमाणीकरण या नीति वो विधेयक बिहिबारे राष्ट्रपति ज्याकु दूत बिगु ख। सरकार चिकित्सक सुझ कथ मी छोमा सोरो गाउँपालिका एक या निङ या त दुमा गणेश नेपाली या त वासे नीति थथे भारतीय मयङ्कीगु कोछिगु दु वेकया वासले भौतिकया चोपी चिकित्सक तेसान हापा बिगु सुझा कथ सरकार नेपाली या त भारतीय नु दिल्ली एम्स अस्पताल यङ्केगु फुकन्ज्या फोङ कगु ख वेकया त थथे विमानस्थल यङ्केगु नीति गृहमन्त्री सुदन गुरुङ थहे खटे जुगु व सडक नेपाल प्रहरी व ट्राफिक प्रहरी चछि छेला दिगु ख। नापा सरकार वेकया नीति हवाई उद्धार एयर एम्बुलेन्स या व्यवस्था नापा यागु ख थ्वया न्ह सरकार नेपाली या फुक वास खर्च सरकार या कोष यागु कोछिगु न ख। भारतीय विमानस्थल पाखे नेपाली या त एम्स अस्पताल यङ्के गुफुकम बन्दोबस्त नापा यागु जुसाना वीर अस्पताल या वर्ण आइसियु वार्ड भेन्टिलेटर तया वासया नाचोमा नेपाली या स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर जुई थुङ्कानी थुज्याको अवस्था मेगु थासे यङ्की बुले झन हाठ्या बोलनीगु चिकित्सक तेसन सुजन बी थुङ्कानी सरकार वेक या त थथ्या नीति भारतीय वासया नीति यङ्की गुज्यादी कगु दु। अथियाना गृहमन्त्री सुदन गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साय सचिवालय दुजपी वीर अस्पतालले सहत वीर अस्पतालले दुने तयारी अवस्थाके स्ट्यान्ड बाई चना चोङ्गु खसा हिने सोता इले अस्पतालले आँखा झाका कक्षके भर्ना जुमा नेपालिया म ये यहाँको प्रतिशत मिन छोगुदु। आ वीर अस्पताल प्लास्टिक सर्जरी विभागका संयोजक डाक्टर पियुष दाहाल नेतृत्व या युनिट वेक या त सोया चोङ्गु दुसा चिकित्सक तेगु पुचना वेक या हि या त नियन्त्रण त्यता व स्वास्थ्य अवस्था या त स्थिर देखे त मध्यक वास याना चोङ्गुदु। राष्ट्रिय सभाया हिगया बैठक सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण शोकको संशोधन विधेयक 2083 नापा खुग विधेयक पारित यागुदु। राष्ट्रिय सभा बैठक खरिद राष्ट्रिय सभा बैठक सार्वजनिक खरिद निकको संशोधन विधेयक 2083 सहकारी नापाङको संशोधन विधेयक 2083 स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नापाया छु नेपाल एनिया त संशोधन यायोगको विधेयक 2083 आर्थिक विधेयक 2083 व ऋण ढोनीको विधेयक 2083 दथिया सहलिपा सर्वसम्मति पारित यागु ख। बैठकीय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालम हिगो राष्ट्रिय सभा पेङ्गु अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदीय समिति सहल याना समिति प्रतिवेदन नापा व निगु आश्रित विधेयक सभा सहे सहलह याना पारित जुगु प्रतिनिधि सभा छोगु खसा अथेना प्रतिनिधि सभा सहसना नापा वोगु आर्थिक विधेयक 2083 या त मिगया राष्ट्रिय सभा बैठक सर्वसम्मति पारित यागुदु। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने हेवया दिगु आर्थिक विधेयक 2083 पारित याना प्रतिनिधि सभा सन्लित छुएमा धका तया तगु प्रस्ताव तफा वर्ष र लिपा सभा सर्वसम्मति पारित यागु ख। बैठकै सांसद सन्हुङ्गु नेस्याली सोभिया दिसे अर्थमन्त्री वाग्ने सरकार विकास निर्माणे पङ्ग कथा कया तगु यको एन त आपला सुधार यागु ज्याखे जना चोङ्गु तया दिगु दुसा। राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा सहसना नपा वोगु राष्ट्र ऋण हुनेगु विधेयक 2083 सर्वसम्मति पारित यागुदु। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले ऋण हुनेगु विधेयक 2083 पारित याना प्रतिनिधि सभा सलित छुएमा धका तयादीको प्रस्ताव तफा वर्ष लिपा सभा सर्वसम्मति पारित यागु ख। बैठकै सांसद पिसा विधेयक या तफा वर्ष लसन होङ्गु न्यासाली सभ्या दिशा अर्थमन्त्री वाग्ले निर्वाचित सरकार या मन्त्री तेगु सल्लाहकार व सचिवालय तव्या केगु ज्याता राज्यता भारी कुबीगु मुआलिगु याना यागु धयादिगु दुसा विधेयक या तफा वार्सल सम्पत्ति कासे सांसद पी सोमनाथ पोर्तेल सम्झना देवकोटा रुक्मिनी कोइराला ओ मिना सिंह रखाल नापापिसा सरकार ऋण लोहनीगु जक्क तथङ्गु खज्या मयासे
दयाचुङ्गु ऋण खनेदेको कथा खर्च याय मागुलिनापा सरकारी अध्ययन कोषालय दिगुदु प्रतिनिधि सभा मिगया बैठक सरकार प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह नेतृत्व सरकार स्वच्छी दिया लब विशेष जानकारी यक गुदु बैठक सरकारी प्रवक्ता नापाङ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल सरकारी स्वच्छी दिए प्रगति विशेष जानकारी याका दिशा सरकार स्वच्छी दिने विशेष या दलहे देका ज्या याना न्याजाको धयादिगु दु प्रवक्ता नापाङ मन्त्री पोखरेल संघीय मन्त्रालय लिया मोयाना चिन्च्यागु देकागु व मोलिया जुइ व दक्षी दुने निगु अर्व ढेवा राज्य कोषे मुनिगु अनुमान यानागु जानकारी व्यादिगु खसा प्रशासन याता राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त देकागु समाज प्याच नक्सा हसना बोलङ्कीगु ज्या जुगु प्रवक्ता पोखरेल कनादिगु ख मन्त्री पोखरेल सरकार दीर्घकालीन शासकीय रूपान्तरण लिधन्सा कया नापाङको दया त शासकीय सुधार लिदंसाय कथन हेज्या केगु बचनापा पङ्का दिगुदु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा मन्त्रालय मात हत्या निकायसँग कानून अख करार सेवाकै कर्मचारी मते त उजह बिया दिगुदु कर्मचारी व्यवस्थापन या त विधि सम्बद्ध पारदर्शी व्यवस्थित देखे त मा कथन या धुवाथुइगु मसिका हो औचित्य पुष्टि याना संवैधानिक प्रक्रिया पुङका जक्क कर्मचारी ते त वैक्ल उजम ब्यादिगु ख नापा थिति निकायसँग कानुन अख त धङ्गु ल्याखे करारे कर्मचारी नियुक्ति याबले आ संस्था या मुख्य व्यवस्थापन हात्या खनेदया चोङ्गु मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा कनादिगु ख संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सार्वजनिक संचार माध्यम या त राजनीतिक भर्ती केन्द्र या कथ म छेले त इनाफेना दिगु दुसा संस्थागत सुशासन कमजोर जुगु आर्थिक भार उपयावना चोङ्गु धासे थुच्यागु ज्या नङ्केगु नापाध्या दिगुदु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग निखुकगु बैठक चिकित्सा शिक्षा आयोग को सञ्चालन कार्यविधि 2083 स्वीकृति अगुदु प्रधानमन्त्री नापा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग अध्यक्ष बालेन्द्र सहाय नाय सुइसा मिगसी अन्दरबारे चुङ्गु बैठक आयोग हुङ्गु नियुक्ति उपाध्यक्ष डाक्टर देवेन्द्र खट्टी दुत व्यादिको कार्यविधि सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत यानादिगु ख संसदीय सुनाई समिति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्त या नियुक्ति या नीति प्रस्तावित समस्या संसदीय सुनवाई या नीति प्रक्रिया याकगुदु मिग चोङको समिति बैठके समिति या सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ प्रस्तावित समस्या विषयसँग उजुरी मुङ्केगु नापाया सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम वा संघीय संसद सचिवालय विद्युतीय माध्यम पाखे आधिकारिक तथा पिथनेगु वा प्रसारण यायगु कोछिगुदु बैठक सूचना प्रकाशन निपा वैगु उजुरी सुझाइ या अध्ययन या न वैगु सुनवाई या मिति कोछिगु कोछिना नै यागु दुसा संवैधानिक परिषद प्रस्तावित मु निर्वाचन आयुक्त मान बहादुर कार्की व प्रस्तावित आयुक्त डाक्टर राजीव सुब्बा व गुरु प्रसाद वाग्ले ना संसदीय सुनवाई समिति सन्छुए धुङ्का समिति मिगचोङ बैठक सुनवाई प्रक्रिया न्यजाकगु ख कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी किसान या त इलेहे रासायनिक स ल ह्याता मन्त्रालय पश्चिम भएको कुतयना चनागु धयादिगुदु मन्त्रालय मिग गोसागोको पत्रकार मुजा मन्त्री चौधरी बाली यायगु इले मु यी वयाचङ्गु जु साना सा आपूर्ति इनेगु प्रणाली किसान या ख व डे न्याङ्कसँग वगु सूचना या प्रत्यक्ष निगरानी जुया चङ्गु इलेहे पश्चिम फको थो हाठ्या नङ्केता आपलङ कुत याना चुनागु थयादिगु ख नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा मनु तेस छेला चोङ्गु अधिकार या त अचत व्याकेगु याना संविधान संशोधन प्रक्रिया न्योज्याके फैगु ध्यादिगुदु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय यले मिग गोसागोको संविधान संशोधन नेपाली कङ्ग्रेस दृष्टिकोण विशेष ज्यासोले वैकल सहमति सर्वस्वीकार्य विधि व परिस्था पद्धति या त आत्मसाती या त ब्यादिगु ख सभापति थापा संविधान व संविधानी दुगो व्यवस्था नापा असहमति जुगो पक्ष नापा सहल या मागुली ब्यादिगु खसा वैकल संविधान पिथनीगु मु नेतृत्वकर्ता थगु पार्टी जुगले संशोधनीय नीति न भाला कुबीगु नेथना दिल पार्टी उपसभापति पुष्पा पुसाल संविधान या त अझ गतिशील याय मागुले बबिया दिल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्टी शुद्धिकरण
सुदृढीकरण रूपान्तरण र पुनः संगठन नपाया पुनः गठन नपाया कार्यदल देव्यापी सुझाउ मुङ्के गु अभियान वोगु सुधाया सुझाया लिधाँसा प्रतिवेदन या त लिपाङ्गु ख्वा बिगु भाला कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा व महासचिव शङ्कर पोखरेल या त ल लागुदु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासले मेगाचङको कार्यदल बैठक देया झिन्सोङगु थासे न्याका तगु सुझाउ मुङ्के गु ज्याजो तालागु लिचोपी कागुदु वो गु सुझा त्यता क घाना लिपाङ्गु प्रतिवेदन देखे गु कोचिना याना गु थागुदु सा उगु बैठके नायक केपी शर्मा ओली न बोटिक दिगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल नापा अटिजम या लिधाँसा दुगु नमुना विद्यालय परिस्था व सञ्चालन नापा या व्यवस्थापन यागु विशेष अवधारणा पत्र देखे त निसङ्गु प्राविधिक समिति थगु प्रतिवेदन लहलागुदु शहरी विकास व भवन निर्माण विभाग या उपनिर्देशक रोशन श्रेष्ठ या संयोजकत्व विज्ञापी दुथ्यागु खुमसिया प्राविधिक पुचल न अध्ययन लिपा देखको प्रतिवेदन मिग मन्त्री पोखरेल नापा लहलागु ख प्रतिवेदन लहलानाका अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री पोखरेल प्रतिवेदन या छेलाबुला हया अटिजम दुपी मचा मस्ते त अफुको कथा सेवा लल ह्या त अटिजम नमुना विद्यालय पुलिस तयाएको बसमा भ्यादिल आदेश पिनेबुख अमेरिका इरान तथि हाकन तचोको लापु जुया चुङ्गुदु अमेरिकी सेना होर्मु जलमार्ग जखया लागा नापा इरानिया गुइगु सैन्य आजुखे आक्रमण यागु धागुदु इरान लिपाङ्गु निनु धुने अमेरिकी आक्रमण झिम्पेमा मनुष्यगु नेचामा खापाजुगु धागुदु इरानिया सरकारी सञ्चार माध्यम या कथा बुसेहर आणविक ऊर्जा केन्द्र लिक या लागान निशानाके लाकगु दुसा थो तर अमेरिका थो विशेष सुन लिस बिगु मधु थुकिया लिसा इरान कुवेत बहरायन कतार दुगु अमेरिकी अखडा या त लक्षित यासे मिसाइल आक्रमण यागु धागुदु कुवेत जोर्डन क्या छुन थासेन मेगु आक्रमण यायगु इरानी सञ्चार माध्यम तेसन निथङ्गु दु खाडी मुलुक तेसन इरानी आक्रमण तेगु पुष्टि यागु दु बहराइन राजधानी मानामा विस्फोट जुगु दुसा कुवेत मिसाइल व ड्रोन पनिगु थागु दु कतार सुरक्षा सतर्कता जारी यायगु धागु दु थ्वेदति इरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनिया मसहते अन्त्येष्टि यागु दु अन्त्येष्टिस दोलन्द मनुतेस बोति कागु खसा छु प्रदर्शनकारी पिन्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध ख्याचो जागु नारा नपा प्रेड कार्ड कुबिगु ख खामेनी वङ्गु फेब्रुअरी 28 अमेरिकी व इजरायल मङ्का हेकाले सिगु ख आकाशय जानकारी कप्तान किलियन एम्पाबे व उस्मान डेम्बेलिया गोला मोरक्को या त बुकुसिया फ्रान्स फिफा विश्वकप 2026 सेमी फाइनल थाहा वङ्गुदु अमेरिका बोस्टन स्टेडियम वङ्गु चाने जुको क्वार्टर फाइनल कासा मोरक्को या त 2-0 गोलम बुकुसिया फ्रान्स विश्वकप या सेमी फाइनल थाहा वङ्गु ख एम्पाबे हापाङ्गु हाफे पेनाल्टी पाके गोलिया मफुसाना निकोगु हाफे दासा गोलिया त तालागु व मेगु गोलिया ग्वालेमी जुगु ख फ्रान्स मन्टिको सोको खुसी विश्वकप या सेमी फाइनल दुहाङु ख थ्यान ह्यो फ्रान्स 2018 विश्वकप या ट्रफी ट्याकगु खसा 2022 उपविजेता जुगु ख कासा खुइगु मिनेटे एम्पाबे गोलिया सेम फ्रान्स या त नापाङ्गु थ्या बिता तालागु ख थ्या ल्यु कासा या खुइगु मिनेटे वेक लहे पास मिले या धुङ्कानी उस्मान डेम्बेल गोल या से फ्रान्स या त ह्योने अङ्कगु ख थ्या ल्यु कासा या मेगु गोल जुई मफुत धासा फ्रान्स मोरको दत्ती 2-0 गोल या ट्याकुसा पिकागु ख फ्रान्स आ सेमी फाइनल बेल्जियम व स्पेन दत्ती या त फ्रान्स आ सेमी फाइनल थेङ्गु बेल्जियम व स्पेन या ट्याकुसा ट्याकुगु पुच नापा मिटिगु गोसादु कासा थौँ चाने जुइगु गोसादु आमो समय जानकारी थौते न्याङ्क सर्ग खिउँसे चुनिगु सुप्या भुनिगु जुगुदु देया पहाडी लगाए यक्कु थासे मलनापा नाप्सा तोय मध्यम टकै अभावैगु वचवा पुकुवाइगु सम्भावना दु बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश या तराई लगाए छुन थासे व मधेस प्रदेश या म थासे तराई लगाया मो थासे मलनापा लाप्सा त्यो वाविको सम्भावना कुबिगु जुगुदु छ वङ्गु निपे गौसा यहाँ सोनिगा क्वाज निच्यागु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस तथि चोनिगु दुकुमा दु थौ निने यहाँ सोनिगा क्वाज निच्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस तथि चोनिगु दुकुमा दु छ थौ सुते यहाँ सोनि गले च्याता न्यागु न्याता इजु च्यागु मिनेटे लुगु सूर्य शनिल नेता इजु च्यागु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन छिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस सुभा

0: यति हप्ते परन कि नगर्थे मैले साँच्चै मना नपरे महिना वर्ष दिन कुरी बस्थे किन साँच्चै मना नपरे
1: एकदम राम्रो बक्सी गरेछ एकदम ठिक छ ल बर्खे।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँग सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विभिन्न चारिटा विधेयक प्रमाणीकरण कयलनि छ। राष्ट्रपति पौडेल सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक 2083, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहिल संशोधन विधेयक 2083 र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी किछ नेपाल ऐनके संशोधन करवला विधेयक 2083 बृहस्पति दिन प्रमाणीकरण कयलनि छ। श्री राष्ट्रपतिके कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। संघीय संसद के बैठक से पारित भ प्रमाणीकरण के लिए ई विधेयक बृहस्पति दिन राष्ट्रपति कार्यालय में पेश भेल छल। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम संवैधानिक निकाय प्रतिवेदन देने सिफारिश कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलने। राज्यसभा के आजुक बैठक में पहिल बेर राष्ट्रीय समावेशी आयोग के आर्थिक वर्ष 2081-82 के प्रतिवेदन ऊपर भेल विचार विमर्श में के क्रम में उठल विषय वस्तु तथा सुझाव कार्यान्वयन काल जवाब बतौलन। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के दिशा जवाब दैत मंत्री गौतम संवैधानिक निकाय सरकार से स्वतंत्र होबाक आ संसद प्रति जवाबदेही भेला से सरकार संवैधानिक निकाय के प्रतिवेदन के सिफारिश कार्यान्वयन में मात्र सीमित होबाक चर्च कलन। ऐसे पहले कार्यव्यवस्था समिति के बैठक में एहन विचार विमर्श होत आयल बावजूदो सदन में भेल ई विचार विमर्श नया प्रयोग आ नया अभ्यास भेल हुनकर कहब छलन। अई प्रतिवेदन ऊपर के विचार विमर्श ऊपर भाग लैत ऐसे पहिने सांसद सब पदम बहादुर परियार, मदन कुमारी शाह, प्रेम प्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेश कुमार आले मगर, रोशनी मेची, कृष्ण प्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल, विष्णु बहादुर विश्वकर्मा अपन धारणा व्यक्त कयने छलथि। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक में यह अखार 31 गते दिन के 1:15 में बैसत। राष्ट्रसभा के सांसद सब काल त्रिपुरेश्वर में आत्मदाह के प्रयास के ने मुगु के गणेश नेपाली के उपचार क्रम में निधन भेल घटना के सत्य तथ्य छानबीन का दोषी के कड़ा कार्रवाई करबाक लेल सरकार संग मांग कलने छे। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में शून्य आकस्मिक समय में सांसद सब पदम बहादुर परियार, नर बहादुर बिष्ट, सोमनाथ पोर्तेल, तुल प्रसाद विश्वकर्मा, कृष्ण बहादुर रोकाया, पूजा चौधरी, रेणु चंद, मनरूपा शर्मा लगायत काठमांडू महानगर प्रहरी पठाउ राइडर गणेश नेपाली के मोटरसाइकिल के हुई लॉक के ने कारण घटल घटना के यथार्थ के संबंध में सदन के जानकारी करेबा लेल सरकार संग मांग कलन। सांसद सब सरकार के जथाभावी दंड के भार से पीछा कर नेपाली नागरिक आत्मदाह कर लेल बाध्य भेल कहित सरकार गरीब के विपक्षी में ठार भेल आरोप लगौलन। बैठक में राष्ट्रसभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल राष्ट्रपति कार्यालय से विधेयक प्रमाणीकरण संबंधी पत्र के ब्यौरा सभा के जानकारी करने छले थे। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ऊर्जा क्षेत्र नेपाल के आर्थिक रूपांतरण, रोजगारी सृजना, औद्योगिकरण आ हरित विकास के महत्वपूर्ण आधार भेल बतौलने। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक सबके संस्था ईपान के पदाधिकारी सब संग सिंह दरबार में भेल विचार विमर्श में प्रधानमंत्री शाह नेपाल के निर्यात व्यापार के प्रवर्धन में ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेख्य भूमिका रहत से बतौलन। ओ नेपाल में ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्धन के क्षेत्र में आबि रहल समस्या, अवसर आ चुनौती जेहन क्षेत्र में ईपान उठौने विषय के नेपाल सरकार गंभीरतापूर्वक लेने स्पष्ट कलन। प्रधानमंत्री शाह ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा संबंधित सरकार वाला निकाय सब संग समन्वय का आवश्यक सहजीकरण आ समाधानक लेल आगू बढ़क के आश्वासन देने ईपान के पदाधिकारी सब के दिलने छलथि। अई विचार विमर्श के क्रम में ऊर्जा क्षेत्र, जल विद्युत विकास, ऊर्जा में निजी क्षेत्र के लगानी आ वातावरण, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन आय मार्फत देश के अर्थतंत्र के विकास जेहन विषय में विचार विमर्श तथा संवाद भेल प्रधानमंत्री के सचिवालय जनौलक। संघीय संसद के उपसभामुख आ उपाध्यक्ष तथा सातो प्रदेश सभा के उपसभामुख के 2 दिनक राष्ट्रीय सम्मेलन से संघीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के थप प्रभावकारी बनेबा सहित प्रतिबद्धता सहित वृतामूट घोषणा पत्र 2083 जारी भेल छ। घोषणा पत्र संघीय संसद आ प्रदेश सभा के उपसभामुख आ उपाध्यक्ष के भूमिका के थप प्रभावकारी बनेबाक, संसद के वार्षिक कार्यतालिका निर्माण तथा कार्यान्वयन के व्यवस्थित करबाक आ संसदीय समिति के प्रतिवेदन तथा निर्देशन के प्रभावकारी कार्यान्वयन में जोड़ दिलक। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक उत्तरदायी बजट, स्थानीय तहसंघ के समन्वय, नागरिक सहभागिता तथा बजट संबंधी नीतिगत सुधार, संघीय संसद आ प्रदेश सभा सचिवालय के संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति तथा स्रोत साधन के सुनिश्चितता, प्रविधि मैत्री संसद के विकास,
महिला नेतृत्व की क्षमता विस्तार अध्ययन अनुसंधान प्रवर्धन और डिजिटल व्यवस्थापन के सुदृढ़ बनेबाक विषय में घोषणा पत्र में उल्लेख है। संसद से बनल कानून के उत्तर विधायिकी परीक्षण पोस्ट व्यवस्था के निगरानी में उपसभामुख तथा उपाध्यक्ष के नेतृत्वदायी भूमिका रहबाक तथा संघीय संसद और प्रदेश सभा बीच अनुभव आदान प्रदान की निरंतरता देबाक सहमति कायल गेल अछि। सम्मेलन वीरतामोड़ घोषणा पत्र 2083 में व्यक्त प्रतिबद्धता के व्यवहार में रूपांतरण करब आवश्यक सहकार्य समन्वय और निरंतर प्रयास करबाक दृढ़ संकल्प सेहो व्यक्त कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख रूबी कुमारी, राष्ट्रसभा के उपाध्यक्ष लीला कुमारी भंडारी, कोसी प्रदेश सभा के उपसभामुख सृजना दनवार, मधेश प्रदेश के उपसभामुख बबीता कुमारी राउत, बागमती प्रदेश सभा के उपसभामुख अप्सरा चापागाई, गंडकी प्रदेश सभा के उपसभामुख बीना कुमारी थापा, लुमिनी प्रदेश सभा के उपसभामुख मेनुका खांड केसी, कर्णाली प्रदेश सभा के उपसभामुख यशोदा न्योपाने तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के उपसभामुख कोयली देवी चौधरी के प्रतिबद्धता उल्लेख कायल गेल अछि। सार्वजनिक लेखा समिति के बैठक से बेरुजू अध्ययन करबाक लेल गठन कायल गेल 5 उप समिति के नेतृत्व चयन कयलक अछि। समिति के आई बैसल बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 3 उप समिति एमाले आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बाकी 2 उप समिति के नेतृत्व देल जेबाक सहमति भेल अछि। बैठक में सांसद सब बेरुजू सब पक्ष के सजिया आ सरोकार के विषय भेला से गठन करवला उप समिति में कमती में 33% महिला प्रतिनिधित्व आ समावेशिता सुनिश्चित करबाक चाही पर जोर दिलेन। बैठक में समिति के सभापति भरत बहादुर खड़का अखन करीब 7.55 अरब बराबरी के बिरुजू रहल आय के व्यवस्थापन के लिए आर्थिक अनुशासन आ नीतिगत सुधार आवश्यक रहल बतौने छलथि। सरलाही के सदर मुकाम मलगवा में मधेश प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो के अगुवाई में अनुगमन का लापरवाही भेटल गेल होटल आ पानी उद्योग के कार्रवाई कायल गेल अछि। मधेश सरकार के गृह मंत्री महतो सहित सहायक प्रमुख जिला अधिकारी होम प्रसाद घिमरे, खाद्य व्यवस्था तथा गुण नियंत्रण कार्यालय मधेश प्रदेश तथा सरलाही कार्यालय के प्रतिनिधि अन्य प्रविधि सहित के टोली के बुध दिन साँझ अबेर धरि मलंगवा के होटल आ पानी उद्योग के अनुगमन कयने छल। एहि क्रम में मापदंड विपरीत आ लापरवाही ढंग से संचालन कयल गेल। 7 होटल के जरिमाना तिरायल गेल तो 2 पानी उद्योग बंद करायल गेल। सरलाही के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी घिमरी बतौलने छ। आई भेल भारी वर्षा से महतरी जिला के सदरमुकाम जलेश्वर जलमग्न बनल अछि। करीब 1.5 घंटा धरि निरंतर भेल वर्षा से सदरमुकाम जलेश्वर सहित अगल बगल के क्षेत्र जलमग्न बनल अछि। वर्षा के कारण जलेश्वर के सड़क में 1-3 फीट धरि पानी जमल अछि। सड़क यातायात आवागमन में सेहो प्रभावित भेल अछि। जलेश्वर के शहरी क्षेत्र में ढल निकास के उचित व्यवस्था नहीं भेला से पानि संगे प्लास्टिक गंदा सड़क भरि पसरल अछि। महेंद्र चौक स्थित हनुमान मंदिर सेहो डुबान भेल अछि। जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में रहल राजदेवी मंदिर सेहो डुबान से प्रभावित भेल अछि। आब खेल समाचार। कप्तान किलियम एम्बापे आ उस्मान डेम्बेले के गोल में मोरक्को के हरबैत फ्रांस फीफा विश्वकप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कयलक अछि। अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में शुक्र दिन भेल पहिल क्वार्टर फाइनल खेल में मोरक्को के 2-0 से गोल से पराजित करैत फ्रांस विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुँचल अछि। एम्बापे पहिल हाफ में पेनाल्टी मार्फत गोल कर नहीं सकलथि, दोसर हाफ में गोल कराओ सफल भेले तो दोसर गोल के लिए सहयोगी बनलथि। फ्रांस लगातार 3rd बेर विश्वकप के सेमीफाइनल में प्रवेश कयलक अछि। इससे पहले फ्रांस सन 2018 में विश्वकप के ट्रॉफी जीतने छल तो 2022 में उप विजेता बनल छल। आइ खेल के 60 मिनट में एम्बापे गोल करैत फ्रांस के पहल अग्रता दियौलन। ओहि पश्चात खेल के 66 मिनट में ओ पास मिलौलाक बाद उस्मान डेम्बेले गोल करैत फ्रांस के अग्रता दोब्बर बनौलथि। ओहि पश्चात खेल में थप गोल होबय नहीं सकल आ फ्रांस मोरक्को ऊपर 2-0 गोल के जीत हासिल कयलक। फ्रांस आब सेमीफाइनल खेल में बेल्जियम आ स्पेन बीच के विजेता टोली संग प्रतिस्पर्धा करत। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान बीच के सैन्य तनाव थप बढ़ल अछि। अमेरिका ईरान विभिन्न लक्ष्य में आक्रमण कलाक बाद ईरान खाड़ी क्षेत्र में रहल अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा सहयोगी राष्ट्र के लक्षित करैत क्षेपियास्त्र आ ड्रोन आक्रमण केने जनौलक अछि। एहि बीच पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनी के हुनक गृहनगर मसहद में अंत्येष्टि कयल गेल अछि तऽ इजराइल आवश्यक पड़ला पर ईरान विरुद्ध पुनः सैन्य कार्रवाई करबाक लेल तैयार रहल चेतावनी देलक अछि। ईरानी सरकारी संचार माध्यम के हिसाबे खामेनी के मसहद स्थित इमाम रेजा मंदिर परिसर के स्मारक हॉल में
दफन कैलक अंत्येष्टि के क्रम में हजारों समर्थक सड़क में उतरल छलेथ। बहुतो सिया परंपरा के प्रतिशोध के प्रतीक मानल गेल ललका झंडा लेने छलेथ। राजधानी तेहरान से मशहद धरि के रेल सेवा अमेरिकी आक्रमण के कारण मार्ग में क्षति पहुँचल कहत अस्थायी रूप में स्थगित कैल गेल सरकारी टेलीविजन जनौलक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संग पिछला समय सुरक्षा अवस्था के संदर्भ में टेलीफोन संवाद कने नेतन्याहू के कार्यालय जनौलक। दू देश बीच विभिन्न क्षेत्र में निरंतर समन्वय भ रहल कार्यालय के कहब रहल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: I'm sorry नमे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी